0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा।

0: आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे चंद्रपूर केंद्र आहे। 6:05 झाली आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल प्रभात।

0: करिअरच्या नव्या दिशा.
1: युवा मित्रांनो नमस्कार. आजच्या करिअरच्या नव्या दिशा या कार्यक्रमात मी किशोर आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. हुनर को मिले जब सही पहचान, सफलता बन जाती है आसान. कौशल की राह पर जो बढ़ता है वही भविष्य में आगे बढ़ता है. मित्रांनो आजच्या स्पर्धात्मक युगात केवळ पदवी शिक्षणच नव्हे तर कौशल्याधारित शिक्षणालाही मोठं महत्व प्राप्त झालं आहे. उद्योग, सेवा आणि तांत्रिक क्षेत्रात रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध होत आहेत. या संधीचं दार उघडून देणारी महत्वाची संस्था म्हणजे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अर्थातच ITI. मित्रांनो आज आपल्यासोबत आहेत बल्लारपूर खासगी ITI चे प्राचार्य जाहिद अन्सारी सर. ते आपल्याला ITI शिक्षणाचं महत्व, विविध ट्रेड्स, रोजगाराच्या संधी, स्वयंरोजगाराच्या शक्यता आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन याविषयी सविस्तर माहिती देणार आहेत. तर चला जाणून घेऊया ITI क्षेत्रातील उज्ज्वल करिअरच्या संधींबद्दल. नमस्कार सर, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं किशोर आपका आदरपूर्वक स्वागत करता हूँ.
2: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
1: सर सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि ITI क्या है और इसका उद्देश्य क्या है.
2: तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ITI जो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक तरह का एक कॉलेज है जहाँ पे विद्यार्थियों को टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है. उसे बच्चों को ऐसा बनाया जाता है कि उसके हाथों में स्किल आए और वो इंडस्ट्री में काम कर सके. और ये स्किल आने के बाद विद्यार्थी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं या खुद का स्वयं का रोजगार कर सकते हैं.
1: सर आज के समय में ITI शिक्षा का महत्व क्यों बढ़ रहा है?
2: पहले ऐसा हुआ करता था कि काफी ज्यादा काम जो है लेबर के थ्रू कराया जाता था कि कहाँ पे वहां पे अनस्किल्ड लेबर लग रहे हैं, भारी वजन उठाना है या काम करना. आजकल सब ऑटोमेशन हो गया है, हर काम मशीन से होता है. तो वहां पे हमें स्किल टेक्नीशियन की जरूरत है. और अगर विद्यार्थी अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो उन्हें इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगा और अच्छा रोजगार भी नहीं मिल पाएगा. तो ITI के माध्यम से विद्यार्थियों को एक टेक्निकल नॉलेज मिलेगा, एक स्किल आएगा हाथ में जो इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर सकेगे, कोई मशीन ऑपरेट कर सकेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकेगा. तो इसलिए ITI का बहुत महत्व है. अगर वो विद्यार्थी करते हैं तो रोजगार का काफी अच्छा स्रोत है.
1: उसी तरह विद्यार्थियों के लिए ITI में कौन कौन से प्रमुख ट्रेड उपलब्ध है?
2: वैसे देखा जाए तो यहाँ पे दो किस्म के ट्रेड होते हैं, एक इंजीनियरिंग एक नॉन इंजीनियरिंग. तो दोनों मिला के 130 के ऊपर ट्रेड है, काफी ज्यादा ट्रेड है. लेकिन हर ITI में बहुत कम होते हैं, सभी के सभी नहीं होते हैं. तो बेसिकली जो फेमस ट्रेड है वो मैं बताना चाहता हूँ. उसमें है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल, वायरमैन, वेल्डर, कोपा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है कोपा, उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है. ऐसे बहुत सारे ट्रेड है.

0: जो हमारे आसपास आईटीआई में उपलब्ध है।
1: किसी विद्यार्थी को जैसे कि 10वीं या 12वीं के बाद आईटीआई में प्रवेश करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है?
0: देखा जाए बेसिकली तो आईटीआई में प्रवेश करने के लिए 10वीं जो है एलिजिबिलिटी है कि 10वीं के बाद ही हम एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई कारणवश अगर उसने एडमिशन नहीं लिया और 11वीं 12वीं कर लेता है तो 12वीं के बाद भी वो प्रवेश ले सकते हैं। और इसके लिए सबसे मेन होता है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलअप करना है और जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो कैप के थ्रू होता है, जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस हम बोलते हैं कैप, उसके थ्रू ही एडमिशन होता है। तो स्टूडेंट को फर्स्टली रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, एक पर्टिकुलर हमें शेड्यूल मिल जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो गए, एंड कब हो गए, कैप राउंड कब स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले वो शेड्यूल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है वेबसाइट से ncvtmis.gov.in वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो शेड्यूल के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं।
1: सर, जैसे अभी आपने बताया कि आईटीआई में काफी सारे ट्रेड हैं और हमारे आजू बाजू के कॉलेजेस में भी कई सारे ट्रेड उपलब्ध हैं, अगर विद्यार्थियों को कोई ट्रेड का चयन करना है तो उस समय किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए?
0: मेनली ऐसा है कि सबसे पहले वो विद्यार्थी को रुचि किस चीज में है सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो विद्यार्थी को अगर पहले से ही अगर सपोज उसे कंप्यूटर में रुचि है तो उसे कंप्यूटर लेना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कोई विद्यार्थी बचपन से ही कुछ वायरिंग कुछ इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो अगर उसे इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिसिटी जैसा इस काम में रुचि है तो उसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे मेन आता है रुचि, उसके बाद आता है कि डिमांड क्या चीज है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कंपनीज काफी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल पेपर मिल है, कोल इंडस्ट्रीज है और तो मेटल्स इंडस्ट्री भी है। तो मेरे हिसाब से पहले तो है रुचि, अगर विद्यार्थी में जो रुचि है तो वो उसे ले पहले, और दूसरा है डिमांड। जो हमारे एरिया में डिमांड है फिटर का डिमांड है, इलेक्ट्रिशियन का डिमांड है, वेल्डर का डिमांड है, तो उस हिसाब से हम फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए।
1: आज के वर्तमान समय में कौन से ऐसे आईटीआई ट्रेड है जो रोजगार की दृष्टि से सबसे अधिक मांग में है?
0: हमारे एरिया में जैसा मैंने आपको बताया कि कोल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है और स्टील काफी हमारे एरिया में अवेलेबल है। तो उसको देखते हुए फिटर का ट्रेड काफी अच्छा है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अच्छा है, उसके बाद है मैकेनिक डीजल है एंड वेल्डर ट्रेड है और कोपा है जो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। ये ट्रेड काफी अच्छे हैं हमारे एरिया में और इनकी ज्यादा मांग है।
1: आईटीआई करने के बाद विद्यार्थियों के लिए रोजगार के कौन कौन से अवसर उपलब्ध होते हैं?
0: आईटीआई करने के बाद अगर विद्यार्थियों को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए रेलवे, महाजेनको, महाट्रांसको, पीडब्ल्यूडी है, उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट फर्म है वहां पे काफी मात्रा में वैकेंसीज निकलती है।
1: अच्छा।
0: अगर आप देखते हैं कि अगर इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के लिए अगर 40-50 जगह निकलती है तो आईटीआई के लिए 5,000 से 10,000 जगह निकलती है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थी के लिए, अगर वो आईटीआई करने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब की चाह है तो डेफिनेटली उसे मिल पाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री में आईटीआई का काफी ज्यादा रोल है, आपको बहुत सारी जॉब अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आईटीआई करने के बाद उस विद्यार्थियों के हाथों में गुण आ जाता है। अगर किसी ने इलेक्ट्रिशियन किया तो उसे इलेक्ट्रिशियन का गुण आएगा, तो स्वरोजगार भी कर सकता है, खुद का शॉप खोल सकता है, खुद का सर्विस सेंटर खोल सकता है। तो ये बहुत सही है आईटीआई मेरे हिसाब से करना 10वीं के बाद।
1: किसी विद्यार्थी को अगर सरकारी नौकरी करना है तो उस विद्यार्थी के लिए आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी के क्या अवसर उपलब्ध है?
0: आईटीआई होने के बाद सबसे पहले रहता है अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा हमें, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद विद्यार्थी का चयन हो जाता है एक इंडस्ट्री में, और उस अप्रेंटिसशिप के दौरान विद्यार्थियों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और उसके दौरान गवर्नमेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, इसके जो एडवर्टाइजमेंट जो है आते हैं न्यूज़पेपर में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें डेट मेंशन होता है कि ये डेट तक आपको अप्लाई करना है, उस डेट के अंदर अप्लाई करना होगा विद्यार्थी को, और उसके लिए कुछ एग्जाम रहेगा, एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, और उनका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट में।
1: आईटीआई करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि वो सरकारी नौकरी ना करे और उसे खुद का स्वयं रोजगार शुरू करना है तो वो किस तरह से कर सकता है?
0: स्वरोजगार तो काफी अच्छा है कि विद्यार्थी चालू रखे, क्योंकि स्वरोजगार से उसे भी रोजगार मिलेगा और उसके अंडर जितने भी कर्मचारी रहेंगे उसे भी रोजगार मिलेगा। तो स्वरोजगार चालू करने के लिए जैसे एक ट्रेड में आपको बताता हूँ फिटर, तो फिटर अगर स्टूडेंट करता है तो एक फैब्रिक

फैब्रिकेशन का शॉप वो ओपन कर सकता है। सभी पता है कि फैब्रिकेशन हमें कितना जरूरत है। हमारे घर में विंडोज है, उसके ग्रिल्स है, डोर्स है, ये सब फैब्रिकेशन के थ्रू बनते हैं। तो एक स्वयं का रोजगार वो बना सकता है। और हर घर में इलेक्ट्रिशियन जो है बहुत जरूरी होता है वायरिंग करने के लिए और जो भी अपसेस फिटिंग करने के लिए। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला भी जो है वो स्वयं का रोजगार एक खुद का सर्विस सेंटर चालू कर सकता है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एक ट्रेड है आईटीआर में, जिसके थ्रू वो स्वयं का रोजगार चालू करके फ्रिज एसी इसका दुरुस्त करने का एक व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है।

0: तो मुझे बताइए ये अप्रेंटिसशिप क्या होती है और इसका विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है?
1: ये अप्रेंटिसशिप जो होती है एक ITR कोर्स खत्म करने के बाद ये उद्योग में जाके इंडस्ट्री में जाके एक ट्रेनिंग होता है। तो ITR जो है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम 2 साल का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है हम पूरा करा देंगे बच्चों का, स्टूडेंट्स का, लेकिन वो करने के बाद उसे इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग लेना होता है तो उसे हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। और ये अप्रेंटिसशिप के लिए गवर्नमेंट काफी जोरों से इस कर रही है कि हर एक विद्यार्थी को अप्रेंटिसशिप मिले। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाया है कि स्टाइपेंड का कंपलसरी होने की वजह से हर इंडस्ट्री को स्टाइपेंड देना होगा उस विद्यार्थियों को। अप्रेंटिसशिप अप्लाई करने के लिए हर इंडस्ट्री का एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में जाके अप्लाई करना पड़ेगा हमें, और अगर हमारा चयन होता है, हमारा नंबर लगता है, तब जाके हम उस इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप कर पाएगी। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं वो हम अच्छे से करें, मन लगा के करें और अच्छे मार्क्स लाए। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छे ही इंडस्ट्री में हमें अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा।
0: जी सही कहा आपने, अगर हम पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी ही मिलती जाएगी। सर मुझे बताइए कि लड़कियों के लिए ITR में कौन कौन से अच्छे करियर विकल्प उपलब्ध है?
1: जैसे कुछ लड़कियों को भी अगर हार्ड वर्किंग नहीं करना है, उसे सॉफ्ट काम करना है, तो उसके लिए भी काफी ट्रेड्स अवेलेबल है, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग है, पा है, इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें उतना हार्डवर्क नहीं है।
0: कोई विद्यार्थी अगर 10वीं के बाद ITR करता है तो ITR करने के बाद आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उसे उपलब्ध होते हैं?
1: हाँ, 10वीं के बाद अगर कोई विद्यार्थी ITR करता है तो बिल्कुल उसे उच्च शिक्षा के लिए मौका मिलेगा। 2 साल का ITR करने के बाद उसे डायरेक्ट सेकंड ईयर पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलेगा। जो पॉलिटेक्निक जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग का, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिशियन से अगर करता है ITR तो उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। अगर कोई फिटर से करता है तो उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलेगा। कंडीशन वही है कि इंजीनियरिंग ट्रेड उसे चूज करना पड़ेगा ITR करते समय, और डिप्लोमा करने के बाद भी उसे मौका मिलेगा डिग्री करने का इंजीनियरिंग में, BTech या BE, और आगे MTech, PhD और भी कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं BTech कर रहा था तो मेरा जो मित्र साथ में मेरे साथ था तो उसने पहले ITR किया, अप्रेंटिसशिप करके जॉब कर रहा था, और वहां पे उसके जो फ्रेंडशिप सर्कल में उसे बताया गया कि आगे पढ़ना चाहिए और उसे मोटिवेट किया गया, तो वो ITR करने के बाद उसने पॉलिटेक्निक BTech करने के बाद एक अच्छी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है। ऐसा नहीं कि ITR करने के बाद आप एक टेक्नीशियन के रूप में ही काम करोगे, आप आगे पढ़ाई करके एक अच्छे इंजीनियर और मैनेजर लेवल पे भी काम कर पाओगे।
0: तो हम देख सकते हैं कि ITR करने के बाद भी विद्यार्थियों के लिए कई सारे उच्च शिक्षा के अवसर यहाँ पर उपलब्ध है। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थियों में कौन कौन से कौशल विकसित होने चाहिए, इस बारे में बताइए।
1: हम टेक्निकल नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में टेक्निकल नॉलेज के अलावा भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है विद्यार्थियों को। जैसे कि मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, बातचीत कैसा करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और उसके अलावा वहां पे जाने के बाद इंडस्ट्री में जो भी चीज है उसको अडॉप्ट करना भी उसे सीखना चाहिए। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं, इंडस्ट्री में जाने के बाद वहां का एटमोसफेयर सूट नहीं होता है तो वो ड्रॉप करके वो वापस आ जाते हैं। तो मुझे सब विद्यार्थियों से एक ही है कि वो चीजों को सीखे, वो अडॉप्ट करना सीखे। आपको कुछ महीने तकलीफ होगी लेकिन धीरे धीरे आप उस एटमॉस्फेयर में ढल जाओगे और डेफिनेटली कुछ अच्छा करोगे आप।
0: सर मुझे लगता है कि आपकी ये बातें सुनकर, आपका ये मार्गदर्शन सुनकर कई बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और उनके पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि हमारे बच्चों ने ITR करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी ITR में प्रवेश लेना चाहता है, उसकी इच्छा है कि ITR में वो प्रवेश ले, तो ऐसे विद्यार्थियों को साथ ही उनके पालकों को, उनके पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहोगे?
1: पेरेंट्स को सबसे पहले ये जानना है कि 10वीं करने के बाद कौन कौन से मार्ग हमारे पास है और कौन सा मार्ग हम अगर उसे चूज करते हैं, पसंद करते हैं, तो उस मार्ग के पसंद करने के बाद हमें क्या मिलेगा। 10वीं के बाद आपको ही पता है हम 11वीं 12वीं यानी 11th में एडमिशन ले सकते हैं, जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये स्ट्रीम में रहेगा। मैं पालक को ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो अपने बच्चों को जल्दी रोजगार देना चाहते हैं तो 10वीं के बाद ITR कराए, और ITR कराने के बाद बच्चों के हाथों में स्किल आएगा। और मैंने भी पहले बताया है गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और खुद का स्वयं रोजगार वो यानी खुद का बिजनेस वो कर पाएंगे। कम समय में हमें आगे बढ़ना है तो 10वीं के बाद ITR करना समझदारी है।
0: सर आज अपन ITR शिक्षणाचं महत्व, विविध ट्रेड्स

0: दिल्लीच्या चंद्रपूर केंद्रावरून ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात दिल्ली केंद्राहून सहक्षेपित करीत आहोत.
1: राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी. अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए.
3: पक्का. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
4: हर घर सूर्य घर.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे. दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे. इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है. मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे. इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा. भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया. और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं. श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया.
6: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया. प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए. आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे. भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे. इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे. नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा.
5: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है. श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया. फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी.
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी. तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेके. हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा.
5: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा. इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा. अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा. इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे. श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है. इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है. ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है. ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहर

शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहड़धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @ AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है चाहे वह सुधार जीएसटी फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जो अब तक का सबसे अधिक है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा दिशा में प्रगति की है
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है लक्ष्य है 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है बल्कि ये एक यात्रा है हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं खासकर हमारे जैसे देशों के लिए
5: स्पेशली द कंट्रीज लाइक आवर्स
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है
7: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी

0: तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्म

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और लीजिए सुनिए दीप मनी और नेहा भसीन की आवाजों में रेस 3 फिल्म का एक गीत। कुमार ने इस गीत की रचना की है, संगीत मीत ब्रोस का।

आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी सहायता किसी के लिए जीवन बन सकती है। साथियों, रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। आज जरूरत है कि हम डर और भ्रम से ऊपर उठकर नियमित रूप से रक्तदान करें। आपका एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। आइए इस दिन संकल्प लें, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर

की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है जिन्हें ब्लड ग्रुप ए बी ओ की इन्होंने खोज की थी। इसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2004 में स्थापित किया और मनाया गया था। आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया 3 से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजें, गीत और संगीत आदित्य रिखारी का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना, जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील। भारत भूषण बस 2 वर्ष थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। माँ के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर।

संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

पद्मभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुन रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफर कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात।

0: करने लगा। मासूम सा चेहरा, जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं। बता मेरा हमसफर कौन है बता। एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा, वही प्यार में दिलदार का इंतजार। कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो, तेरा हुस्न रहे आबाद। हाँ एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ, तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ। होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हमसफर तेरा दिल ही है। ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा, चले जाना जरा ठहरो। दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: यूं ही तुम

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त एक मार्गदर्शक और सच्चे हम सफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो अद्भुत है। चले जाना जरा ठहरो आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहाँ हर कोई अनजाना है वहाँ आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि करी में कुछ दिलचस्प पहेलियाँ भी होंगी तो मैं उत्सुक हूँ कि सुरीला सफर में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत प्रतीक्षा रूठ ना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां, अंततः आईना एक ये एहसास करता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं, खरीदते भी हैं, क्या आपने कभी इसकी डिज़ाइन पर ध्यान दिया है या आपको जब आप इसे खरीदते हैं तो इसकी डिज़ाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है। तो आप हमें आईने की डिज़ाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में ज़रूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहाँ शीश महल भी हैं। तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोताओं कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवान खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर दहकती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्म निरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवारने कर संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, ऐसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है। और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थक कर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नजरों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नजरों से नजरें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं।

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओं, वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप खरीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, वो एक खास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी खरीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं, आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है, दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है, जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हम सफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत

सफर की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है। देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।

0: ये जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो है बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन के तरह का बनाया जाता है, जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहाँ कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं, तो जरूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है, मगर चेहरा हर रोज बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियां तो दिखा देगा, पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा, पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहां से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते, मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: कजरा लगा के, गजरा सजा के,

अपना देश फिल्म का ये गीत था मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और ये है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ, और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक लिखा है कि आज का सुरीला सफर आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को जवान दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफर गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, जरा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं। आईना चेहरा जुल्फ हम सफर और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोताओ, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भीगते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, और जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है, और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहर आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं, और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ पाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है, तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब खरीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों कि अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओ, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छत पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, जीना तमान और धर्मेंद्र भी इसमें नजर आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नजर आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के 2-3 फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लग रहा है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले 2 चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थी, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे। जी हाँ, बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी सांझ विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।

दोस्तों, दिन भर की आपाधापी, संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बछड़ों के पास आना रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है, जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है। ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।

हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो जो हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से

दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा।

0: सिलेंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले

0: मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: सब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

फिल्म मेला का ये गीत था, मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर्डमन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, निलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज़ का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गंधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है।
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों चुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के हिसाब से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक साथ व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज,
1: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये

0: बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए। पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
0: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गंधारी।
1: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
0: यही विधि का विधान है तो ये कौन रोक सकता है?
1: ईश्वर कल्याण।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुर

दुर्मुख हो जाए, दुष्कर्ण शत्रुंजय बिंद गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रहेगी।

0: संजय मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष के भांति भूमि पर गिर।
0: बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी। एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारे, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता,

0: श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आतनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
1: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
1: देवी गांधारी,
0: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
1: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
1: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों

0: का स्पर्श पास के बन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि। न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
1: सत्य ही तो एक चोरहीन के गले बदने की याना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
0: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
1: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
0: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
1: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गोष्ठी को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
0: महाराज,
1: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म पातिव्रत्य न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना।
0: हाँ, कही थी।
1: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
0: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
1: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
0: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
1: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
0: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
1: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
0: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
1: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
0: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आप।
1: गुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने

का है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं चला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा। और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट

0: और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय है, इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: कंधारी, देखो मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: कंधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहाँ तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल पड़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यहूं के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार आते हैं जो पुणे जमाने के महान कार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बदामी।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानी सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की कथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से दिल हमें लड़खड़ाए, दूर हटो दूर हटो दूर हटो दुनिया लो हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्ता भी है और सामाजिकता भी।
1: तेरे संसार हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
0: उनकी रचनाओं में प्यार मोहब्बत की बात है और फलसफा भी है।

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक प्रदीप सुपुत्र तुल प्रदीप की मंत्री जोश से बातचीत हम आपके लेकर आए हैं। अब सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को कहे हैं, इसीलिए आज विभारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मिल प्रदीप। स्वागत है आपका मित्र विविध के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे बुलाया।
1: मितुल जी, हम के गीतों की बात कर रहे हैं देशभक्ति, तो की सारी उन्हें बहुत सारे भजन लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और कहना बड़ा मुश्किल है कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है कौन सा कम है। तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत वो कैसे पड़ी और किस से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखे।
2: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्हें बहुत मसाद के बचपन से, तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं, भगवान के लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करें, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत, तो वो भगवान भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो अपनापन करते हैं। अगर ऊपर देखें ये कहे कि सूरज रे जलते ना रे, हाँ, तो ये रे जो है ना वो प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे संबोधन किया, और गाने भी और जन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे राम की मुक्तधाम के, ये उनकी शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। उसके बाद में अगर आप आगे चले हो, मैं आरती उतारू रे संतोषी माता की, तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था से आती थी, ना कोई मंदिर में जाए। कई भजन से हैं और के लोग सुनते हैं, वो भजन भगवान के भजन है। हरिशन फिल्म आई थी, उसमें बहुत से भजन, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक पॉपुलर गीत था।
1: बिल्कुल,
2: बहुत सारे हरिदर्शन फिल्म के गाने हैं, भजन है।
1: तो घर का माहौल कभी ऐसा हो कि आप बहनों ने मिलकर उन जनों को गाया अपनी माँ के साथ?
2: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, तो नहीं गाती।
1: अच्छा,
2: माँ तो कहे मैं तो इनके सामने कुछ ही गाऊंगी। हम गाते हैं।
1: अच्छा।
2: तो जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको अच्छा लगता था।
1: तो मितुल जी, आप कहे तो ये गीत आपको सुनवा
2: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कविता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तुम लोग साथ में ही रहते थे ना, उसमें बातचीत तो रोज होती थी और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय साफ रहता है वैसे इंसान ऐसे हंस सका है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती तो माँ की लाफ होती।
0: अच्छा।
1: आज हमारी माँ ने दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं। तो बेटा, आज जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत में झटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, ठीक है, मतलब वो मजाक, लेकिन वो बोलते ठीक है, हींग ठीक हुई ना, ठीक है, तो अब तो ना आप एक काम करिए कि आप हलवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और का कुछ बातचीत काफी होती है, जैसे घर परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप ने आप जो से पूछा हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ में कैसे, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोग में, क्या ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कभी लिखा नहीं।
0: अच्छा।
1: जो जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कवि तो भी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर ऐसे कमाए हैं तो मैं मत पढ़ा, कुछ और करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों सिखा, ड्राइंग सिखना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो घर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करें।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी दुनिया बन चुकी थी, आप भी अपने समय थे।

0: शौक थी।
1: हाँ, तब मैंने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों खड़ा करना है, उसको अगर अच्छा लगता है और उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहा कि ये प्रदीप की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाई जाएगी। बाहर जाके मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन देती थी कॉलेज में, स्कूल में। उसके बाद उनका कहा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी आज ये पेंटिंग बनाया, वो फिर गर्व महसूस करने लगा।
0: मित्र जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसा की, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उन्हें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा भी देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता, उन्होंने उन पर पूरा आर्टिकल लिखा, ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
0: जी जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्त गीतों को लिखा, बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे?
1: हाँ, जी ने रोमांटिक गीत अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं।
0: हाँ,
1: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बगर बात आई, प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है कि मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले बोलो तुम कौन हो, बोलो कौन हो,
0: क्या बात है, क्या बात,
1: तो मेरे जीवन में किन बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है ना जाने कहां हम थे, ना जाने कहां
0: तुम थे,
1: तो ये भी बहुत सुंदर है। और एक हल्का फुल्का गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्म आ गया था, वो दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा प्यार,
1: प्यार पसंद है, तो ये कितना सुंदर से गीत है और कभी भी कोई भी इसको गाता है,
0: हर पक्की गीत है, हर मौके
1: रोमांटिक गाने भी उन्हें लिखे, ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आप एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी थी और बात भी हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और वो फिर उन्हें उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बर्फ हर लेता है जनजन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तियों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय
1: तुम हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत
0: कितनी गहरी, तो मतलब यह है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्ति है उस कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रोमानियत के उस माहौल में भी जहाँ रोमानी कविता उनके कलम से निकली, रोमानी गीत निकले इतने शांत तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप के लिए, बताइए क्या।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब ला तो वो में मिला 98 में जी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तभी वहाँ के जो आयोजक थे वो थे चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं ये अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हम चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए हमारे लिए आप ले लीजिए कि ये हमारा भी गौरव बढ़ेगा, आपको मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। तब की तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उन्हें लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो सबने कहा कोशिश करेंगे आप अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के और लेने किए कोई व्यक्ति को लेके आए और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट अभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो ही खड़े रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हील चेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देखे और उन्हें उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उन्हें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि तब गाना बजाया जाता है, तो नियम को तोड़ा गया उस स्टेज पे हम लेके उनको गाना बजा और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम वे यश चोपड़ा जी खड़े थे, बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी दीप जी के चेहरे पर कहीं सुख संतोष के चिन्ह नजर आए कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोग ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जिन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य।

0: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सी सुनना पसंद करेंगी आप?
1: जो भी आपके पास हो, मेरे जीवन में रन है तो वो करवा दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत,
1: बहुत सुंदर है।

0: मिर्जी जब बात कर रही है प्रदीप जी, तो कविता और लेखन खैर उनका मुख्य काम था, इसमें वो बह रहे हैं और कहें कि उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे, उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था। हाँ, तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उसपे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे, दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और ये भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्री हैं, वृक्ष, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू सब सफेद वाले, जिस क्या बोलते हैं पता, सफेद जामुन, काले नहीं सफेद, खैर वाटर एप्पल या सब कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग शौक, और जो देखते थे कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं गए,
0: अच्छा,
1: तो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो ना दे माली के करवाना, तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या भाई,
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगा हुआ।
0: जी, उनकी याद आता होगा।
1: हाँ, तो सभी वृक्ष जो उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और भी प्रदीप ने बहुत ही शौक के साथ उस घर बनाया, बहुत रुचि के साथ, तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने मकान बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको

0: लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को आप बना लो, नहीं, रोज सवेर से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए सीमेंट। आज भी हमारी जितनी दीवारें हैं उसमें कील नहीं ठोक सकते आप।
1: अच्छा,
0: इतनी मजबूत है,
1: क्या बात है,
0: इतने साल के बाद। तो उनका मतलब ये है हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर घर नहीं है, मंदिर,
1: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ उसको खड़ा किया।
0: हाँ।
1: जी मित्तल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर लंबी बात की है, अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आप कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है, तो ये रुचि आपके में कैसे आई, ये रुचि से पैदा हुई और किसकी आर्ट आप बताइए, हम श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आप कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत ही कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
0: ऐसा है, मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
1: जी
0: जी, और आर्ट सेंटर है, टीका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ
1: जी?
0: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 8 साल की ही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि लो इस पे स्वस्तिक ड्रॉ करो, एक कागज दिया, एक पेंसिल ली और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे लाइन करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
1: जी,
0: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ के सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स आती थी। उनमें से मुझ में आया
1: जी,
0: तो पिता का लिखना या आना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की का है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया, वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो है ना
1: जी, नवरात्रा में मनाया था, दीपावली में।
0: तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना, मुझे
1: ये तो आपने बचपन की बताई जब माँ आपको ऐसा करती थी। हाँ,
0: लेकिन इसमें मेरा बिल चला गया कि मुझे कुछ करना है, नहीं नहीं मुझे मजा नहीं आता, मुझे लॉयर बनना है, मुझे बनना है, कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
1: जी,
0: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है सुना। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम आते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारे टीचर नहीं है। मैंने बोला सिखा तो सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगी, कुछ तो करिए। और वो अब की बार जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका मतलब ब्रशेस हैं, आप ये सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
1: जी, जी।
0: तो भी मेरे अनाया हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि टीचर बनी, तो वो टीचर तो नहीं स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
1: जी,
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। ये ऐसे शुरू हो गया। मेरी पढ़ाई तो मैंने कम्प्लीट की, मैंने लॉ कम्प्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ ये भी चलता रहा। तो उसे से मुझे मेरी पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया,
0: मकसद मिला, और सीखने में जो आनंद है वो समझ में आया कि

0: स्टूडेंट आप साथ में होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है। तो जब गुरु बन है ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
1: सुख

ज्ञान रखे ना जग नदिया में बने अपनी नाव भी धूप कभी छाँव कभी धूप तो कभी छाँव सुख

0: तो कभी था।
1: मितुल जी, तो हम ये सब सब की आप अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ली, आपकी माँ ही गुरु रही?
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। बताऊं कि जब वो जब तक थी तब तक हमको लगता कि नहीं वो हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि उनकी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्रॉ करना। जैसे ही वो फ्री जाती हमें कलम और हाथ में भी जैसे पर आ गया भी सफेद रंग का कोई हमें कलम ले उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग मेंशन नहीं ना
1: ड्राइंग पर।
2: ड्राइंग
1: तो आपकी बहुमूल्य चीज है, वो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास आज, खजाना।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं कर भी नहीं सिखाते है। हाँ। वो ज्ञान उतनी शिद्दत और बाकी से नहीं देता कोई, जो आपने माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किसे की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं भी कुछ सीखती हूँ, ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, इतना सारा
1: है,
2: अनंत है, आप क्या सिखाएं इसमें, आप ड्राइंग

0: सिखाएं, आप कलर सिखाएं, चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का बहुत सा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं,
1: ऑयल पेंटिंग
0: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर, तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है। आप जो करना चाहो तो स्वतंत्र होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बनते नहीं है, अगर स्कल्पचर आते हैं तो आप वहाँ बन जाते हैं
1: जी,
0: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंद नहीं हो।
1: क्या करते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी इतना शक्ति
0: हुई, तो वो इतना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगी है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, अभी तक कितने जो है आपने
0: आपको आर्ट... आप एक बात बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ
1: जी।
0: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा
1: जी जी।
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने मेरे कला है वो है, मैं अपने रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए बनाते जाती हूँ लेकिन मैं बेचती हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है,
0: नहीं।
1: अपनी कला को एक कला प्रति रह दिया है,
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लाऊंगी ना, हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम जाएगा, मतलब मेरा जो व्यापार है वो कम हो जाएगा। तो इसके मैं मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है। पर आप मेरे कभी गैलरी में आगे देखने लिए तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे होते हैं
1: जी। तो पहले बताइए कौन सा गीत सुन चाहेंगी आप?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहर पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसम की
1: बात कर रहे हैं। तो पहले सुनते हैं आपकी पसंद, ये बेहद खूबसूरत
0: जी।

0: मितुल जी गीत को सुनने के बाद तो कहे मत, अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों सिखा रही है या आप कैनवास पर उतारी है इन कलाओं?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप में पेंटिंग खाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदल है उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत है
0: जी।
1: लोगों के पास जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों के जीवन है, तो कहते हैं हमको दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप दो दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा पोर्ट्रेट करिए, पोर्ट्रेट करने समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कॉन्सेंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए, तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है, पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल बनाते हैं तो उसमें अलग अलग है जवाहत आर्टिफिशियल वो लगे करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं, तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का किराया, थोड़े बड़े तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग ना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है, कपड़े पे पेंटिंग करना। तो अभी मेरे पास दो है वैसे जो 80 साल की ऊपर की है, तो वो दोनों कपड़े स्कार्फ बनाती है और अपने बच्चों बच्चे को बच्चों सबको गिफ्ट देती है, तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनकी

0: बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का अलग टाइप लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
1: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का सभी देखिए आप।
0: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चला, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हुए ना, पुराने वैन गोग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था, उनके ऊपर आप अपना पेंटिंग बनाइए।
1: तो जी हमारे देश में कहीं पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंट हुए हैं, आप किन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ जैसा कोई नहीं
1: बस अंदर

0: आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कई जो है बच्चों को सिखाई हैं, जब इसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से अलग होती है, कला की दुनिया से अलग होती है, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या शौक है? हमारे शौक ये भी जान चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैं भी गार्डन को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ?
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं। जो कौवे हैं, पैरट हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके आजू बाजू रहती हैं
1: और रोज खाने की आती हैं। बिल्लियां कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सबका माहौल जो है पूरा जैसे एक पंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा पुणे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत दे
0: डोली,
1: तो ते द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आया बिल्ली का तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास नहीं या खाना मांगने आया है, तो कभी भी किसी को निकालो मत से, भूखा मत भेजो। ये है ते द्वार खड़ा भगवान, ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते रखे हैं?
1: अभी 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रहे?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां।

0: कुत्ते बिल्ली साथ हैं,
1: साथ रहते हैं, कुत्ते बिल्लियों सड़ते हैं।
0: ये तो आप मजाक रही
1: हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमें बिल्लियाँ बहुत ही तेज तगड़ी है बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: 40 बिल्लियों को कैसे पाती है?
1: बस हो जाता है, जैसे मैं कहा कि भगवान के आशीर्वाद है, हो जाता सब।
0: जी जी जी, तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है। 40 बिल्लियाँ आपने पाल रखी है, वो परिवार सदस्य हो?
1: वो परिवार है, और सब नाम है
0: जी। जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे आलू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउन है, ब्लैकी है,
0: पता ही उनके नाम है।
1: सिबा है, बहुत सारे है। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिन है, दूसरा है चिचिन, जैसे चुचुन भी है, सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, ये सब बिल्ली आपका कहना मानती
1: है? हाँ, मानती भी है, और सामने गुस्सा भी करती है, या बहुत हो
0: जी। ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया, खुरच दो अपने नाखूनों से, आपको बहुत गुस्सा आया उन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे बच्चे हैं।
0: हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यह कि आपके घर एक भरा पूरा जंगल है,
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी भी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो गीत हम आप सुनवा दे, द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर सुनवाइए।

0: और एक बड़ी कलाकार पीटर मितुल
1: जी
0: वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे तो यही है कि बस उनके संदेश हैं, उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश

0: अब बस चलते चलाते ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी सुपुत्री मितुल और एक बड़ी कलाकार पीटर मितुल जी। वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे तो यही है कि बस उनके संदेश है, उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो सोचिए और प्रेम से जिंदा ये एक दूसरे साथ
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कला एक ऐसा माध्यम है जो मैं देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: बहुत खूब बहुत अंदर मितुल जी आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनके जिंदगी को साझा किया, उनकी बात को के लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जो पहले ही कहा कि हमारे अग्रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ से मिलकर बहुत खुशी हुई
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती आने के लिए। और दोस्तों चाले उन यादों की इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप और आज की बातचीत यहीं तक। अब दाकिनी जी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अब जमाने के प्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी बातचीत का ये था तीसरा और अंत भाग। तकनीक सहयोग अनुश्रीता का था, स्वान सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों के उजाले उन यादों के

0: रात में आसमान चांद तारों से फूल काटता है, रात होले होले धरती पर अपना अचल फैलती है।
1: अपनी आप रातों में है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारी बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारी से गूंजते हैं कुछ मोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: बजता है मोहब्बत का आग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारी से।
2: सदा रही है सदा रहे।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भार पर।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को सैफ अली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तू देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे ना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूबकर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार ही तो क्या है। तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस करना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूँ। सुन की बात ही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

उसे मिली तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अदरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा जाता है, अब तू मेरी आंख में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह, और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगू उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्यों मांगू उस खुदा से, और किसी चीज का लगार वो भी नहीं।

देशी सुरीली लड़कन विद भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी, हमें जब तक को चाहा न था। जी चाहे तो साथ ले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमिया हम भी ना हो यूं तुझे अनहा चाहे। सुना खिड़कियां जाके आंखों खुली रहे, मेरे दिल में महता उतरता है इसी जैसे। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझ चले आओ।

0: पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में हमारे ख्वाब सजाए, शबर तुम याद किया। किताब जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तारा आलम कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी बंदे मोहब्बत से पूछना भी बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से क्या है।
1: ते

भीगी जुल्फें भी आंचल, आंखों में नींद हो चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, निके हुए रात हो तो मेरे साथ हो, प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखे कोई अपनी हट भी देर तक सुनाई दे, काश के सवर मेरा चुपके तुझे चुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए, घड़ियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे अगर तू आए, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर ऐसे ये कमाल कराते हो।

साथियों आज छायागी का सफर बस यहीं तक। शिफालीपुर को दिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: तरानी नई पुरानी
1: तराने पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आप दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म हीरो से।

0: बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हुई है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दो नेताओं ने आज बुकेंटॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप तंत्र को दर्शाया गया है। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेश शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के समान त्रिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का आस्था इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव बीत वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने कहा है कि मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 1 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 91 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीयों के हिस्से रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को किसे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी। इसमें 14 भारतीयों को बच लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंताल में तिराजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे डियो को हराया। आईसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्ट में भारत समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी हे नागपूर केंद्र आहे, प्रसारित करत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी पूर संस्कृती भेलोंडे आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या, नागरिकांनी पुकार घेऊन रक्तदान करण्यास

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के इसमें शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी

कॉफी पीना चाहिए? मैं आपको घर भर दूं, फिर मिलेंगे। कहीं फर्श तू भी इसका टकन कर के मौसम लट के पे का भी होश।

0: बुलाए। 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं आई, 21 मई को तुम छुआ था, 6 जून मुझको छुआ था।
1: मम्मी डैडी घर पर नहीं है, ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली जा रही है, बेचारी छोड़ाऊँ।

ये है भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुली धड़कन। ये अब आपको बता दें आज के शेष कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा अंतर्गत। अब से कुछ देर में सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या भजन। 6:45 सुनिए संगीत सरित श्रृंखला गतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक भाग।

प्रस्तुति आरुबाला खरे। शेष जयमा में आज सैनिकों की शौर्य गाथा आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र दान रंजीत राय लेफ्टिनेंट कल की शौर्य गाथा, प्रस्तुति है तेजश्री काम। 7:45 पर इंद्रधनुष सुनिए साज और आवाज। रात्रि 8 बजे हवा में सुनिए नाटक कास के देवर, लेखक अभिलाष, निर्देश पुरुषोत्तम थारवेक। चित्रों का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फिल्म आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता भारत भूषण पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत आलेख और यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंदी। और रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूखा, 6:05 पर सुनिए वंदनवा, 7:30 और 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। हम चरित मानव सुनेंगे 6:30 पर। कल प्रसारित भाग 220। और 6:45 सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला बच तत्व, कलर है डॉक्टर काश महा, भाग 4, प्रस्तुति चार वाला खरे। इस कार्यक्रम आप फिर सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। बोले बिस्तरी आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार की। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, लेख जयंत पात्रीकर, प्रस्तुत का अनुष पाठक। 8:30 पर त्रिलोक सुनवाएंगे। आज के फन आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर, प्रस्तुतता शकी बख्शी। सुबह 10 पिटारा में सुनिए उजाल उनकी यादों के, इसमें कवि अदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार तुल प्रदीप मंदाकिनी की बातचीत का तीसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 होगा कार्यक्रम सुरीला फर, सदाबहार नगर आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली, कल कशन है विश्व बुजुर्ग दुर्भाव जागरूकता दिवस, कथा सुधा में सुनी भूषण भाग 3, सोशल मीडिया के वाद विवाद समय की बर्बादी, प्रादेशिक व्यंजन उत्तर प्रदेश का मक्खन लियो बेडमी पूरी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में जीवन शैली और योग, योग शिक्षक शाव दरवाल से राजेंद्र पाठी की बातचीत, प्रस्तुतता जुबैर खान। छह का समय रहेगा शाम 5 बजे, 5:30 पर आप देंगे तराने नए बाने। शाम 5:35 पर कार्यक्रम होगा सनारंजन। शाम 7 बजे माला का प्रसारण होगा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है ते घर के सामने। हवा महल का समय रहेगा रात 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए झलकी नी हकीम, लेखक राजकुमार अल्टर, निर्देशन गोपाल सक्सेना। चित्र आप सुनेंगे 8:15, रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:20 पर सुनिए आज के प्रकार, कार्यक्रम केंद्र है अभिनेत्री गायिका रैया पर। संगीत का समय रहेगा रात 10 बजे, आलेखक जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर राघवेंदी। और रात्रि 10:30 सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोख के अंतर्गत। यह है विविध भारती सेवा देश की सुनीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री आवाज को सुना। गी मनोज मुंतशिर का था, गीत MM करीम का। आइए सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज में केदारनाथ का गाना। गीत अरब आचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: गजतत्वाद्य सुथे गजवाद्यों पर आधारित श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुदूर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगी और विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमैचा, मध्य प्रदेश का चकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गजवाद्य है। भारतीय लोक संगीत में जिससे बजाई जाने वाली सिम सारंगी, जोग सारंगी, धान सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध देश में प्रचलित रही, वैसे लंगा जात के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजराथन सारंगी भले गुजरात लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इस प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंग का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंग बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोक के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तार लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, बुगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और ये मिलाने पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाते, विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोक गीतों साथ संगत उपयोग में लाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दो ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेही वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदुका। आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अब हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश, इसे सुनकर पुराने नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत्वाद्य गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी भी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुमाला खर। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सैन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक कथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए कर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर अपना पहला युद्ध लड़ा था। जी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान जीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
1: प्रगति नजर आई बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उन प्रोग्राम की करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती का उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा, तो जेनेटिक डिजीज से कहीं ना कहीं दो चार हो रहा है और कई बार भी कराते हैं पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम, कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
2: बात करने से पहले मैं ये थोड़ा स्पष्ट करूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी कोई दो तीन साल पहले बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल बहुत चंद देशों में एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वो कभी संभव जब

0: स्पेशल प्रधानमंत्री जी के लिए रखी गई, तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को ये समझाया कि आज शायद का महत्व ना समझे लेकिन कल हम किसी से पीछे ही रहेंगे। ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्र को भी मानना, आने वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रिसाइकलिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट का होगा, या इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स आएगा, तो उसमें भी हम पहल कर ले। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ जीन्स को ले तो डाइवर्सिटी
1: जी,
0: हमने उसमें सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने हम अभी तक सफल हो चुके हैं। हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्पटम्स हो सकता है पैदाइश के समय जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, कम, चाहे सिकल सेल एनीमिया है, चाहे नीवन पिग डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती, इसलिए डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई नागरिक हमारे शुद्ध से हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है। और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: इसी तरह हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो Bio-E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था 1948 के लगभग पेंसिलिन, उस समय पाउडर था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उस पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था, वो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदा मंद है, उसके बाद इसकी इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट, तो उस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेस जनरेशन एंटीबायोटिक हुई है, चाहे वो पेनिसिलिन के बाद क्लोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बार से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्राई किया, यहाँ डेवल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ मार्टिंग कर रहे हैं।
1: सर बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या अलावा अलग जो मिशन लॉन्च किया रहे हैं, उन्हें कितनी गति मिलती हुई नजर आ रही है, गगनयान मिशन को बहुत सक्सेस बनाया।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमें ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट पॉकेट्स भी जो बना लग लग
0: लग जी। अब देखिए आज से 5 साल पहले स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आकलन ये लगाया जाता है, जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टुवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में सिंगल डिजिट हुआ करते थे, 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हुआ पिछले दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, लॉन्चेस भी हो रही हैं, और इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है, और दोनों एक समय में बना के कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट तो जा ही रहे, रॉकेट खबर हमारी बड़ी बनती है चंद्रयान लेकर के, वेरी फैसिनेटिंग फ्लाइट, लेकिन हिंदुस्तान की विशेषता है कि हमने सेक्टर को इतना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए इजीली, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर गतिशील शुरू किया, गतिशील ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित कैसे संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गतिशक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंडफॉर्म्स लेकर के जो कार्यक्रम, ड्रोन स्पेस को लेकर, उस भी हमारा स्पेस ही काम आ रहा है, हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल वही है, तो कहने का ये है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टुडे। और फिर आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस, दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं, और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हम केवल इंडियंस बना रहे हैं बल्कि इंडियंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

0: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले 2020 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी क्रूज मिसाइल वियतनाम जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, बहुत सारे हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपीय देशों में फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह आप देखिए स्टार्टअप में हम जब शुरू हुए तो 300-400 थे, हम तीसरे दिन पहुंच गए लगभग 2,26,000 से
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 98 हम करके 38 आ गए। पेटेंट में हम नंबर 6 है दुनिया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और उससे 55% ऐसे है जो रीडिंग इंडिया बाहर जाकर शोध करते थे, ये बच्चे वो जिन्होंने शोध किया पले बले यहीं से पेटेंट फाइल किए
1: जी।
0: और यही कारण है आज विश्व में निगाह उठाकर देखता है, ब्लॉकों के साथ देखता है
1: जी।
0: अब वो कहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा योगदान मानते हैं और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, उसके अलावा की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या तरह से जो नई गति वो देते नजर आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें।
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो भी इस लॉन्गर एन ऑप्शन इन नेसेसिटी इस्तेमाल में होगा, कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित
1: हैं,
0: जैसे हमारा स्पी ग्राम्स है ग्रीवस, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी कहा है, एआई के द्वारा डिसीजन भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के शिकायत का से जीत वार्तालाप एक भी करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लगता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहाँ हम फिजिकल डॉक्टर बिठाते साथ में डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, ये जीन्स बात कर रहे
1: हैं,
0: तो इतने सारे जीन्स को स्कैन करने में कई दशक लग गए, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लैंग्वेज मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग आए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ हुआ है, उसमें हमने अब नौ कास्ट कर रखा है। नौ यानी आप घड़ी देख 3 घंटे का रनिंग कर सकते हैं, आपने कहीं मीटिंग पे जाकर छतरी ले जाएंगे ना। और हमने शूज को किया ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नौ कास्ट के ही तट पर स्काई कास्ट शुरू किया जो फॉग डिटेक्शन रखता है वो एयरक्राफ्ट से उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देश की बराबरी सके। इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की हक बढ़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशन ने रखा है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ किस तरह से आप इस देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उस ओर बढ़ाए जा रहे
0: हैं? ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें हमारे 4 अलग अलग है, कंप्यूटिंग, एआई, डेटा, एआई इनोवेशन सेंटर्स, एआई फ्यूचर्स लिंक, और इसी से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2030, उनमें हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी दिक्कत ये कि उसको स्किल अप कर रहे हैं, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उसका शायद अभी कैपेसिटी कम, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं, जैसे ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार शुरू किया, वहां पर एक और कंपनी हमने ओशन एनर्जी का रखा, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती तेज हवाओं का इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो बीच जो अक्षर पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में टाइड आता है खतरे वाइज तो ही है लेकिन साथ में कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अ कंप्लीट वर्च्यू, से भी बिजली याद होती है, समुद्र से भी अलग रिन्यूएबल एनर्जीज। और मुझे लगता है कि 2040 हमने 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो लगभग 10% पूरे हमारी जरूरत का बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता

0: 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से सोचा जाता है
1: जी।
0: वो उस सेक्टर से जो पहले न तलाशेंगे न तलेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश के तट बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस किसी नहीं देखा, अगर हम उसको आज सके। हमारा दूसरा सरमाया है लियास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर रेवोल्यूशन है फ्लोर कल्चर जो प्राकृतिकता जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी, ट्यूलिप हर पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरी कल्चर, तो ये जो सेक्टर थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर, इनको पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 पहले ही उस तरह पहुंच जाएंगे, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष आ सके।
1: बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई तकनीक जो चीजें लेकर सामने आ रही है, बात क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा शिफ्ट करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring an interview with Ashish Dhan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Manabhan, journalist.
4: 26th May 2014, National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcome scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. As India then tracked the current execution, developed the administrative capacity it lacked, answer all this and more, we have us today Ashish Dhan, founder and CEO of Convergence Foundation. Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for being.
5: Thank you for having me.
4: I wanted to begin with the work, which is basically a intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code of execution, or what you often say, acquire a transnational muscle?
5: I think we have. As you point out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with, say, something like Janan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we change the architecture to bring SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Sohagya for electricity, Jeevan. So I think mission mode, we have achieved a lot. Our hard infrastructure. I think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there's been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on APIs, with the state generally coming, developing certain muscle.

0: ये मेरा छोटा भाई शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटो अप करके पागो दिखाता था। कल मैं लाइट बिल जीरो अमाउंट देखा तो सोचा एक पक्का फोटोशॉप किया होगा। जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है भैया रब ऊपर वाली की दया है, सोलर नल है ना। मैंने कहा ओ ये सी है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: ये कहानी एक नर्स और उसकी अदर मन की।

0: आज के हवा में कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के खिनाटी कागज के जेर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी,
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगलू।
2: आती हूँ, ठहरो।
1: पायल की पटवारी ताई
2: जीते हो मंगरू?
1: पटवारी जी घर में है?
2: वो सवेरे ही मुख्य के सख्त बदली को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आप कैसे? राहुल बहू कैसी है?
1: सब कुछ अंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: हाँ, तुझे बधाई दे तो मैं भूल ही गई। तो जिनसे कहती चल मंगरू घर हो आए, बसे मिलाए, इन्हें तो फुर्सत ही नहीं।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम पटवारी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिन में आए।
1: जी यूं ही समय नहीं ना पटवारी जी।
3: अच्छा आओ बैठ, यहाँ क्यों ना भाई। मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।

0: जी पंडित जी, भगवान निरपा की है, लड़की के संग में अपनी आंखों को रोशनी देती है।
1: मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
0: इसी कारण मैं आपको खुशी में शामिल होकर न्योता देने आया हूँ।
1: अरे न्योता,
0: कल मेरी बच्ची का नामकरण है, उसे आशीर्वाद जरूर आए और खा भी मेरे।
1: नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तक मत करो, समय निकाल कर मैं आ जरूर।
0: ऐसे कैसे हो सकता पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वही हैं।
1: तो तुमने पूरे गांव दावत दी है?
0: अरे पटवारी जी, मेरा बस था ना, तो आस पास के 2000 गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
1: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे पहली संतान हुई है। लेकिन
0: लेकिन क्या पटवा जी,
1: अभी कुछ ही महीने पहले ही तो करीब पूरे गांव को तुम दावत दी ना।
0: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां।
1: अच्छा अच्छा, हाँ वो तो तुम्हारे पिता का 13वां। ये तुम्हारी बच्चा नाम क्या है? भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जर को माने हम भाई, अपनी खुशी गम में पूरे गाँव को शामिल करना कभी नहीं भूलता। पानी की तरह पैसा देते।
0: अरे पटवारी जी, यही एक बात तुमको से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को करना।
1: ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई, इसी दाव के बहाने दूर पार के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
0: रूप सिंह?
1: हाँ रूप सिंह।
0: छी छी छी छी छी, अरे किस कंबक का नाम ले लिया आपने पंडित जी, अरे उस चोट को तो कोरट ही जेल की बदेगी।
1: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा
0: है? बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है। जो
1: मेरा ख्याल है मंगरू, इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो खाली चुके हो।
0: तो क्या हुआ पटवारी, बाकी एकड़ भी गिरा दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चों को नोचने चपूंगा।
1: अरे तो सुलह क्यों नहीं लेते?
0: अरे का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
1: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का साल बना लेना जायज नहीं।
0: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार लड़ाई में कहते सबको जायज है। सब तमाशा भर देखते जाओ।
1: वो तो देख रहा हूँ मंगरू, ताशा ही खराब।
0: अरे ओ ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो बैठा ही रहा। ओहो हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योताना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
1: अच्छा, राम राम। अच्छा, राम राम राम राम।
0: ओ कल शाम दावत में जरूर आना।
1: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।
2: आकाशवाणी मुंबई। सोनालिका राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठक बातम्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याकडून संयुक्तपणे भारत इनोव्हेट या कार्यक्रमाचं उद्घाटन। अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातला संघर्ष थांबवणाऱ्या कराबाबत संदिग्धता कायम। 100वं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पुण्यात 28 ते 31 जानेवारी 2027 दरम्यान होणार। सोलापूर जिल्ह्यात म्हसवड पंढरपूर मार्गावर पिकअप गाडी विहिरीत पडून झालेल्या अपघातात 8 जणांचा मृत्यू। आणि महिलांच्या T20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत भारत पाकिस्तान सामना सुरू, प्रथम फलंदाज करताना भारताची खराब सुरुवात। नवोन्मेष तंत्रज्ञान आणि देशाच्या युवा शक्तीच्या आकांक्षा देशाच्या भविष्याला आकार देत असून त्यामुळे देशात परिवर्तन घडून येत असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हटलं आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रान्स अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संयुक्तपणे फ्रान्समधल्या निस इथं आयोजित भारत इनोव्हेट या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं, त्यावेळी बोलत होते। सध्या देशात 2 लाखांपेक्षा जास्त स्टार्टअप्स आहेत। आज भारत मानवतेसाठी तंत्रज्ञान या मूल्यानुसार नवोन्मेषाच्या मानव केंद्रित स्वरूपाला प्रोत्साहन देत आहे, असं ते म्हणाले। देशातले तरुण स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांमधल्या जागतिक आव्हानांवरच्या उपाययोजना विकसित करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं।
3: यहां कोई AI से गांवों का जीवन बदलने के लिए

कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्री शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गायस से। इसे लिखा है सईद कादरी, संगीत इतम का है, फिल्म का नाम है मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में जवानी है दीवानी फिल्म का गाना ना लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुरता से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनके साधन ने बांसुरी को विश्व मन पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के घर के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बाल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर भस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधर्व में जब तक न लाया है, वो आप कह सकें कि मैंने उस पे मैं किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सो के अलौकिक संसार में लेती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका पहली लाई से सुबह और शाम 6:35 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलो कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम त्रिलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती सीने पर पांव रखना चाहा, सब पचे सीना तान कर हमने खड़े हो गए, सीमा सुरक्षा की द्वार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम साहसी, कहानियां देश के लिए कुर्बान होने के जज्बे की।

0: गाथा, देश के जाबाज फौजियों की शौर्य, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: कार्यक्रम आइए आप सुनिए के की आवाज में वो है फिल्म गाना। गीत देश मिश्रा लिखा है, संगीत प्रेम का है।

0: इस गाने के साथ चित्रलोक विक्रम अब समाप्त है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार संध्या के साथ मैं मनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक किला कैरियोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र सोलापुर में एक वाहन कुएं में गिर से 8 श्रद्धालु की मौत। उमा तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के मुख्य मैच पाकिस्तान को 171 का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन अल्बेर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों फ्रांस की इसमें समय शिष्टमंडल की बात कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल है। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 साधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता के और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवान के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेशन।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रहे हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 40 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन से भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सब लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए भरोसेमंद साझेदार, हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता
3: and scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: भारत का परिप्रेक्ष्य वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है। वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो

0: आज बातचीत में ही रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइन थी था वो यही था कि जिस भी डिफेंस फॉर्म की बात करें, इस बात को हमें बेसिस के आगे बढ़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर लेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एमुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षा सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षर एवं जागरूक कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीकॉल टोल फ्री 1444 और वेबसाइट www.tel-law.in से की जा सकती है।
1: साचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है भारत की रक्षा अर्थव्यवस्था अगले सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। हमारी संवाददाता से
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धियों स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर बढ़ाए और भारत के विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट, साथ समाचार कक्ष से जा भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कहा है आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने सरकार के कार्य की जानकारी आप देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेरेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-20 में आयकर स्लैब कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दर पर आधारित है, जिससे करदाता का दायरा बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता वितरक दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट और सबको मिलकर फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार शासन और नीतियों में तकनीक व्यापक उपयोग किया है। भारत सीजी तकनीक क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि सीजी से जुड़े वैश्विक ट्रेंड में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
5: डिजिटल इंडिया
6: अब सिर्फ एक सोच

0: रह गया है बल्कि एक यात्रा है। हम दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे ट्री भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा माजरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवान के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर पूजा अर्चना कर लौट रहे दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं गिर गया।

0: माजरस तालुका में भासवाड़ा पंडरपुर मार्ग पर तालुवान के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर पूजा अर्चना कर लौट रहे दौरान चालक के निधन होने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास बताया है कि ओमान के तट के पास भारत ध्वज वाली नौका विराटन का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे जिनमें से 11 भारतीयों को बचाया गया है जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले लिए 2 बार हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए वेबसाइट re.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मी मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 30 और ऋचा घोष बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार से प्रभाग रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर चर्चा में भाग लेंगे। अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नी के ऐतिहासिक विला कैलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्वीकरण की साझेदारी के विस्तार पर खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत एवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खाबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या समाप्त। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines.
2: बॉडी फिल्म के इस गाने के साथ गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जिन बांसुरी की मधुर तान से मन हर को झंकरे उठता है, जिनकी उंगलियों स्पर्श से बांसी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंगन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस गुण को दरबारी के गंधार में तक न ला जाए, वो आप कह सकते कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सो के अलौकिक संसार में जाती है, पद्मश्री पंडित रो मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंगला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनते तोमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म गाना, गिंदीवर ने खास संगीत कल्याण जी अनंत जी का है।
3: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अफगान फिल्म का गाना। गीत मरु सुल्तानी ने लिखा है, संगीत सवारा है एस डी मन्ने।

इसमें के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विभारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भांति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तो उदय के पास वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभित्री वहिया रहमान
1: वो भी एक मैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आप ये भी नहीं कह रहे कि आप जाएं तो जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जब कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या जाती है भाई, भाग रही हूँ और जब भी कर रही हूँ आ भी रही हूँ, मूड और एक्सप्रेशन भी सही है, कैसे होता है। खैर बड़े टेंशन में शॉर्ट किया मैं, करे गिरी नहीं।
0: इसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

बरसात की रात फिल्म की एक आवाज सुनकर याद आ जाता है वो जमाना, जब फिल्में तो ब्लैक व्हाइट होती मगर उन कहानियां जीव के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो आकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील है। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। माँ के गुजरने के बाद बड़े भाई आर इंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने पश्चात भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए ले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बसे। तार शर्मा निर्देशित 1941 फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर

0: रहे थे।
1: संघर्ष जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनंद फानन सुप्रसिद्ध फिल्म तारों की श्रेणी में लाकर दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद फी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की मुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा अपार फलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आ गईं। भारत भूषण ने अभी से किरदार सते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्ज़ा ग़ालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते, हिंदी फिल्म में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं वो है अभिनेता।

0: पुरुष केवल अभिनेता नहीं थे, किताबों का बहुत शौक था। भिन्न विषय की किताबें पढ़ते रहते और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र नई फसल, बंद बहार और दूज का चांद आज फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थी।
1: स्वप्न हरे फूल से।

बसंत बहार, कभी कालिदास, परदेश, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुली मार, बरसात की रात, मुड़मुड़ के नदिक, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, ग्यारह हर लड़कियां, जहारा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन दे चुने अभिनेताओं में थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उन चुनाव किया जाता। बूझ का चांद, इस फिल्म में वो निर्माता भी थे। उस जमाने मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़त उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और अंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संत्रीमा, मीरा, उमरा जान, हीरो, रहगुजर, काला धा, बुरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज फनकार अभिनेता भरत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे सुती साहक आंशा सिंह सुतकर्ता रमेश गोखले अब दीजिए इज्जत जयंत त्रिकर को
1: आज के फनकार।

सुनने लो को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा तुम्हारा हाथ तो हमने भरी खुशियों को टांग ली था अपने आमन में सितारों की तरह और तुम्हारी उलझन को अपना लिया था हमने मथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कान को अपना नया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की सफर है एक साथ चलने का फिर क्यों आस हो तुम।

हम सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे ही मरहले, हम ही रहे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएं सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें, ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदले हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी पड़ी है।

आंखें किसका इंतजार की बेकरार हुई जाती हैं, बेचैन पहले से ज्यादा बढ़ गई है। क्यों होशी हालत में जिए जा रहे हैं आजकल।

बदलती मौसम के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहाँ पहली बहार थी वहाँ अचानक वीराने हैं, मुसानों को झक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अब सोच में गुम हैं और गुन रहा है सुरैया ये ना।

दिल है वक्त एक शात बाजीगर, वक्त मजमा लगा है, खेल दिखाता है और फिर समय कर अपना सो सामा पड़ता है अगली मंज की तरफ। हम भोले भले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जा रहेगा हमेशा, हमेशा गूंज रहेंगे तराने।

0: जिनके बसुरी की मधुरता से मन का हर कोना झंकर हो उठता है, जिन उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगी है, इनकी साधना ने बांसुरी को शुमंच एक नई पहचान दी।
1: दरबार के गंधक के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बदल उमड़ घड़ रहे हैं, मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, घुटन को बारी के गंधार में जब तना लाया जाए, वो आप कह सकते हैं नहीं, उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर स्तुति श्रोताओं को सुरों अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मी पंडरोनु मजदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 5 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विभारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल हुए। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 3 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नवप्रवर्तन कार्यों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान इन नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है। हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता, भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़े नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा बलचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर पांडुलवाड़ी पास हुआ। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। इसे NTA की वेबसाइट NEE